0: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।
1: गोकुले दार्चुला गोकुले दार्चुला गोकुले दार्चुला।
2: ओ गुरु, यो गाडी कहाँसम्म जाने हो?
1: सिट खाली छ, एक दुई नम्बर। कहाँसम्म जाने हो नानु?
2: जाने त म दार्चुलासम्म हुँ। कति बेला जाने हो? टाइममै पुगाउने हो कि नै?
1: ल ल, धेकै जस्तो त लागुला छ। कहाँ हो नानु जाने? दुरै सम्म हो कि?
2: दिक्क लागिसक्यो, कति बेला हो क्या जाने?
1: ल ल ल, एक कान्छ सबैजना आयो कि नै? भाइर हेर त, हेर हेर सबैजना आयो कि नै?
3: ल ल गुरु, सबैजना आइसके, जाउँ जाउँ जाउँ।

0: यहू एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com
1: संत फिल्म्स प्राली प्रस्तुत गर्दछ।

0: मिल्दैछ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए,
2: साथै
0: मुच्छ